0: करी बरादर ने मिलत आप रखी तशरीफ जनाब आली जनाब आला जनाब आलम और सारी खवातीन ऑल द लेडीज मोहतरमा फॉलो मी एंड डियर मुअज्जिज सारिफ ऑल द अदीब एंड मुसन्निफीन नो व्हाट आई मीन व्हेन आई स्क्रीम
1: हेलो
0: get a speeding ticket. It just hit the knee and got me paid a bitch. I'm in check out a picture with it because I need to paint a picture.